चेता मन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशियारे आयत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी।

पौड़ी शिव कित संतों की जन सचो सच त्याय उन्हें मंदे पैर न रखे कर शुक्र धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़ा बनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश कलन देवे चढ़ा सवाया बढ़िया ही वड्डा पाया बढ़िया ही वड्डा।

साम कह सितंबर स्वामी सचमा अच्छे साच रह सब को सच समावर कर भरपूर राम नाम देवा मसूर नायल प्रच जाय नानक तुम तो खंतर पाए।